0: मनरासा बात कराए
1: माध्य आचार धर्म सुरक मिंसा कसन प्रोड़ती समगे
2: नेट न्यूज़
3: सत्य अंतया
4: सत्य अंतया

0: एक्साइट गन लक्के के चार्ज कर गन एक्साइट बैटरी एक मिल दी के ना वारंटी के एक्टिवेट कर सैम साथी कम अंगल पानास पाए एलईडी टीवी का दिना गन
1: Meltol, Hisaratia, Una, Sempratishab, Angapatha Vedanava, Apasudina Sadaha, Ikman Sahania, Meltol, Parasitamol Vishishaki,
2: Kaduil and Agaredi, Maida Hataravanadina Vurthavan of Vishankaya, Navatama Shakavin, Edina Tapamin and Obert, Eskana di Ramusadaha, Seata Dolahaka de Manavak, Konde Sisahitai, Peminen, Number Fancy Ekola Henghata, Kolabapara Kaduila, Amatan, Binduai Hatehatai, Tunsia Sutunai, Binduai Pansia Supaha.
3: Pratikshava, Kassa, Una, Angapatha Vedana, Turan Karana, ഫിമയ ഔഷധയ സെവനകല മധുകാ കാസറ്റ് പനിയ സെവനകല ആയുർവേദ നിഷ്പാദനയ അപ്പേ വെതകമ അപ്പേ ഉറുമയ 40 വസരക അഭിമാനയ സെവനകല ആയുർവേദ 0947 21 23 540

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
2: अरे बातिया संतोष, शोर नहीं, शोर यार, शोर।
3: The same working man, B. You do it your style and you do it the way you like.
0: पवन करे